राम गई बनमानी पछी मारे हरिनी हे मको सीताजी हरियो जटाए उतरी गो सुग्रीव सँग भेट भयो बाली मरन गयो लङ्कापुरी खाग भयो रावण कुम्भकर्ण मरन गयो श्री रामायण यति हो नारायण।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: अनुरोधक दीप जनपन कार्यालय दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: you? Extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: अनुरोधक दीप जनपन कार्यालय दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट म बद्री प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सन् 2026 मे 6 तारिख वैशाख 23 गते बुधबार चौथी सुन्ना घडी 13 पल मात्र अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो साक्षण कल्पे भरी

नवश काय सारे दौलतले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मंडाखुन सवले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सद्वात कई काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मानुन बढ़ाले पनि कृति उज्ज्वल होस सुत सहित का